न जाए, ठीक न जाए, ठीक न जाए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय राम कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाल कृष्ण कृष्ण।

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी

0: प्रतितिष्ठति
1: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति
0: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति
1: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति
0: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति
1: य एतमग्निं चिनुते
0: य एतमग्निं।

0: अपागुं सर्वत्वाय
1: अपागुं सर्वत्वाय अपागुं सर्वत्वाय
0: पुष्करपर्णगुं
1: पुष्करपर्णगुं पुष्करपर्णगुं
0: पुष्करपर्णगुं
1: पुष्करपर्णगुं पुष्करपर्णगुं
0: रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति
1: रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति
0: पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति
1: पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति।